बोला दियो पांच रुपया। अरे एक रोज मैं बुद्धि से बोला दियो पांच रुपया, बुद्धि ने नाराज होकर और दे दी पांच झरुया। अरे बुद्धि ने नाराज होकर